क्रोध अहंकार फिरे दीवानिया सिर लगा जम डंड तां पिछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिरे शतानिया झूठ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिरे दीवानिया सिर लगा जम डंड तां पछतानिया बिन पूरे गुरदेव

0: मोह चोटा ना खाए मने जम के साथ ना जाए।
1: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन खोए।
0: मने मार्ग ठाक ना पाए मने पथ जो परगट जाए।

0: असांख जाप असांख भाव असांख पूजा असांख तप ताओ
1: असांख ग्रंथ मुख वेद पाठ असांख जोग मन रहे उदास
0: असांख भक्त गुण ज्ञान विचार असांख सती असांख दाता।

0: असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम कोर
1: असंख अमर का जाहे जोर असंख गलबड़ हत्या कमाहे
0: असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़ी यार कुड़े फेराहे
1: असंख मलेश मल पाखाहे असंख

0: असांख नाव असांख थाव अगाम अगाम असांख लो
1: असांख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा
0: अखरी लेखन बोलन बाण अखरा सिर

0: अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
1: आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार
0: कर कर वेखे सर्जन हार नानक सचे की साची कार
1: आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एको वेस
0: एक दूजी बो लख होवे लख होवे लख वीस
1: लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश
0: एक राह पत पवड़िया चढ़िया होए अकेस
1: सुन गला आकाश की किटा आई रीस
0: नानक नदरी पाई।

0: बसे मन माहे
1: जिथे भक्त बसे के लोग करे आनंद सच्चा मन सोए
0: सच खंड बसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल
1: जिथे खंड मंडल वर पंड जे को कथे दांत ना अंत
0: जिथे लो आकार जिब जिब हुक्म तिवे तिवकार
1: वेखे विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार
0: जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत बेद हथियार
1: खला अगन तपताओ पांडा पाओ।

0: नामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बहुते
1: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज रुजेश्वरं परम रूपे
0: परम सिद्धे नमो राज रुजेश्वरं परम रिद्धे
1: नमो शास्त्र पाणि नमो वस्त्र

0: सिमरत प्राण सास्तना आवे बहुचित मद पार्षंत वै प्रसाद
1: गुणगन उधार महिमा अपार आसन भंग उपमानंग
0: अनुभव प्रकाश निज दिन अनास।

0: रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है।
1: के सर्वत्र माने है के सर्वत्र दाने है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है।
0: सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है।
1: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु।
0: सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है।
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी।
0: सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है।
1: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है।
0: सर्वत्र मान्य है सदैव अंग प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी।

0: निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रयुक्त प्रभा है, सुयुक्त सुधा है,
1: सदैव स्वरूप है, अपेति अनूप है, समस्तो अपराज है, सदा सर्व साज है,
0: समस्तो सदा मैं सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है,
1: अगाध रूप है, अनाध स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे,
0: त्रिभंगं त्रिभाते गंजे अगाते शुभं सर्वभाग्ये सो सर्वानुरागे,
1: स्वरूप है, अछिज है, अछूत है, के नरकं पर नाश है, पृथ्वील प्रवास है,
0: निरुक्त प्रभा सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है,
1: सदा है, विभुक्त प्रवाह।

0: ना पुत्रेना सत्रेना मित्रेना तातेना मातेना जातेना पातेना
1: निरसाकं श्री कै मितोमी कै सदैव प्रवाह है अजय है आजा है
0: भगवती शांत व प्रसाद
1: के जाहर जूहूर है के आजर हजूर है मिसल सलाम है समस्तल कलाम है
0: के
1: रोजी दह दें के राज कर रहे दें करी मुल्क माल है के उसनल जमाल है
0: गरीब मलख राज है गरीब बल निवाज है हरी पल शिकान है हरासल फिकान है
1: रंकंग पनास है समस्तल निवास है कंजल गनीम है रजाय करहीम है
0: समस्तल जुबा है के साहिब किरा है के नरकन पर नास है वैस्तल निवास है
1: के सर्वगवान है में सर्वान है तमाम उल्तमी

0: चाय है खलखा एक है बसंबर है गुल जपा कृत है अमृता अमृत है ननायक है खलखा एक है
1: बसंबर है करुणालय है नृपनायक है सरपायक है
0: अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है।

0: नमस्तुल पर नाम समस्तुल पर नासे अगंजला नाम में समस्तुल निवासे
1: कामंग बैपुते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग पर नासी सदर्मंग बैपुते
0: सदा सचदानंद सदगुण पर नासी करिमल।

0: ताको कृपाण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद ना जानत
1: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत नह पिन
0: आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती एक रूप अनूप स्वरूप रंग पे और आव कई भूपा कहो भूल राजा वे बैठा कहो सिमट प्यो संकरी कैठा अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारा सिख संगर हो
1: सकल मलेश करो
0: जी हाँ सोई तब शरणी परेतन के दुष्ट दुख

0: कृपा दृष्टन जाय न हर हो ताके ताप तनक मो हर हो
1: सब होई दुष्ट
0: एक बार जिन तुम्हें सबारा काल।

गुरु प्यारी साध संग जी वड्या भागां वाले हो साहब एक माल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने बेअंत बख्शिशां कीतियां ने अमृत वेले तो अपनी पवित्र गोद दा आनंद सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने। जो सच्चे पातशाह जी ने अज दा हुक्मनामा बख्शिश कीता है सलोक बसंत स्वर्ग लोकै जित ते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान ब्रह्मन है। सच्चे पातशाह कहिंदे कहिंदे जेकर मनुख स्वर्गां वर्गे देश विच वसदे होण ते सारी धरती भी जित लैण ना ते जे ओ उस परमेशर नूं विसार दिंदे ने ते समझो भी ओ जंगल दे विच भटक रहे ने जिन्हां नूं कोई रस्ता नहीं लभदा। इस तरह जंगल दे विच भटक रहे ने कौतक कोड तमासिया चित न आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ। सच्चे पातशाह कहिंदे जगत दे करोड़ां चोज तमाशियां नूं देख के प्रभु दा नाम जे याद नहीं आउंदा चित नहीं आउंदा ते कहिंदे ओ थां उजाड़ समझो ओ थां भयानक नरक दे बराबर।

सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब की सूझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाय, अमृत नाम हृदय माहे समाये।

तुतमि इतना भाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई। जय महा भयान दूर जम दलै तै केवल नाम संग तेरा चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिनमय उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव हो सुख नेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप तो सुखिया। लाख करोरी बंदना परै हर का नाम जपत निस्तरे। अनक माया रंग तिख नाम बुझावे हर का नाम जपत अगावै। जे मार्ग एहो जात अकेला तै हर नाम संग होर सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटतै नहीं कोट लख बाही नाम जपतै पार पराही। अणक बिगण जय आय संघारे हर का नाम तत्काल उधारे। अणक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावै विश्राम। हाँ मैला मल कबू ना धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइया साध कै संग। जे मार के गणे जाहे न कोसा हर का नाम हुआ संग तोसा। जय पैंडे मान दुगबारा हर का नाम संग उजियारा। जहां पंतरा कोना सियानू हर का नाम तै नाल पछानू। जय मां प्याण तप्त भव काम तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां त्रिखा मन तुझे करख तै नानक हर हर अमृत बरख है।

हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधु कमात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बिवेकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर का नाम जन कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत गज नहिं वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन के मालक जीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन के ओठ सतानी, हर प्रताप जन अवर ना जानी। ओतपोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता। नाम की महिमा संत रिंद वसै, संत प्रताप रुत्र सब नसै। संत का संग वड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ। नाम तुल कछ अवर न हुए, नानक गुरमुख नाम पावै।

दस वस्तु ले पाछै पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहाँ करे। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा, जाग कै मन लागा परम मीठा, सर्ब सुख ताहू मन उठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया, गणत सहु अपनी दे रास, खात पीत बरते अन दुलास। अपने अमान कछ बाहर से ले, अज्ञानी मन रोज करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बाहर उसका विश्वास न हो।

अहनक भांत माया के हेत सरपर होत जाने नेत बिरकी छाया स्यों रंग लावे ओ बिनसे ओ मन पछतावे जो दिसे सो चालन हार लपट रहते अंधे अंधार बटाऊ स्यों जो लावे नेह ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक अपले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ अस्ति अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या पुसुपर करत गुमान अस्थिर भगत साधकी शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुनहे मिथ्या हस्त पर दर्भ कोई रहे मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरै रूपांत मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बेकार को धावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बुझे मिथ्या सब भये सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह वर सुचा बिरथा ना बिना तन अंध मुख आवर ना कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाए मेघ बिना जो खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों कृपण के निरार्थ दाम तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक तां कै बल बल जाओ रत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो कुंडलावत जानन हार प्रभु पर बीन बार पेक ना काहू पीन और उपदेश अपना करे आवत जावत जन्म मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आपे माने आपे आप कर तन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा पाव सियाणप सगल ते रहत सब कर जाने आत्म की रहत जिस भावे सलै लड़ लाए तां तनंतर असमाए सो सेवक कृपा करी निमख निमख जप नानक

जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमृत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई ध्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे। जे प्रसाद सुख से सुविजे मन अठ पैर ताक जसगा विजय। जे प्रसाद तुख सब कौ मन मुख ताको जस रसन बखाने। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जबर दर गय मान पावे नानक पासे ती कर जावे। जे प्रसाद अरोग कंचन देही लिव लाभ होत सदाम स्नेही। जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जे प्रसाद तुझको न पहुँचै।

जय मन तिस मृत को अर्थ की जय। जय प्रसाद अशुभ हस्त अशुभारी मन तिस प्रभ को कभू ना बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोय प्रभ अपने मना। जन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत से त्याई तसे त्याई जो एक लख इहा उहा नानक तेरी रख। जय प्रसाद करे पुन बवदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास तारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद पेखे विस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे वसना। जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले। जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो।

अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सुर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी कह रीढ़ समान जैसे राजरंग को लागे तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीर देख ज्यों बसुदा को खोदे को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कहे गुनाओ नानक ज्यों पावक सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे महल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन हुए प्रगास जैसे तर उपरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्चे उच्चा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पये नानक जिन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की नीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी कुप्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माह ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी छो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग ब्रह्म ज्ञानी कह वसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञानी अमृत आगत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी कह नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी से करे प्रभे आप ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का